0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। एक लड़का था, हर किसी को खुश रखने में लगा रहता था। घर वाले क्या चाहते हैं, दोस्त क्या सोचेंगे, समाज क्या बोलेगा, बस इसी में उसकी पूरी जिंदगी निकल रही थी। धीरे धीरे उसने नोटिस किया, वो सबके लिए जी रहा है पर खुद के लिए नहीं। एक दिन वो शहर की भीड़ से दूर एक पहाड़ पर जाकर बैठ गया। फोन साइलेंट, कोई म्यूजिक नहीं, बस वो और उसकी खामोशी। पहली बार उसने खुद से सवाल पूछा, मैं सच में चाहता क्या हूँ? शुरू में जवाब नहीं मिला क्योंकि सालों से उसने दूसरों की आवाज़ सुनी थी, अपनी नहीं। लेकिन थोड़ी देर में अंदर से एक छोटी सी आवाज़ आई, मुझे परफेक्ट नहीं बनना, बस खुश बनना है। उस दिन उसे समझ आया, जिंदगी में सबसे बड़ी जीत किसी और जैसा बनने में नहीं बल्कि खुद को पहचानने में है। दोस्तों, हम अक्सर सक्सेस के पीछे भागते भागते अपनी खुशी, अपनी पहचान सब भूल जाते हैं। लेकिन याद रखना, अगर पूरी दुनिया भी आपको समझ जाए लेकिन आप खुद को ना समझ पाओ तो वो अधूरापन हमेशा रहेगा। इसलिए कभी कभी थोड़ा वक्त खुद के साथ भी बिताओ, क्योंकि खुद की तलाश खत्म नहीं होती, वहीं से असली जिंदगी शुरू होती है।
1: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आरजी अदनान और आप सुन रहे हो All is well, RJ Adnan का मॉर्निंग शो, फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो ऑन MGM 90.8 FM। क्या आप जानते हो कि एक ऐसी जादुई चीज है जो आपके किचन में ही मौजूद है और आपके शरीर का रिबूट बटन दबा सकती है? नहीं, मैं किसी महंगी मशीन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पानी की। तो हेल्थ टिप्स में जरा इसके बारे में जानते हैं, पानी का जादू। नियम बहुत सिंपल है, सुबह आँख खुलते ही चाय या कॉफी से पहले बस एक गिलास गुनगुना पानी। जैसे ही हल्का गर्म पानी आपके अंदर जाता है, ये आपके शरीर के सफाई तंत्र यानी कि मेटाबॉलिज्म को एक्टिव कर देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप सुबह अपनी गाड़ी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वार्म करते हैं यानी कि किक मारते हैं, उस तरीके से। ये जादुई गिलास ना आपकी स्किन को ग्लो कर देगा, इसी के साथ रात भर जमा हुआ टॉक्सिक यानी गंदगी को भी बाहर निकाल फेंकेगा। साइंटिस्ट इसे कहते हैं कि आपके पाचन तंत्र को भी जगाता है और आपको पूरे दिन एनर्जी देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा चमके और पेट हल्का रहे तो सुबह इस जादू को आजमाइएगा, गुनगुना पानी पिएगा। तो बस अपनी सेहत के लिए एक घूंट प्यार का, मेरा मतलब है गुनगुने पानी का। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक ब्रेक के बाद, लेकिन ये हेल्थ टिप्स में बातें याद रखिए और ढेर सारी मस्ती और गानों के साथ सुनते रहिए।

0: Let's talk about mental health, क्योंकि mental health well तो जिंदगी all is well. You are listening MGM 90.8 FM.
1: All is well. RJ and Nanaka morning show. Freshness live radio ka flow.
0: On MGM 90.8 FM. और अपने साथ है डॉक्टर मानसी करजगांवकर मैम, HOD ऑफ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट MGM यूनिवर्सिटी. सो मैम, मेरा आज का सवाल आपसे ये है कि ऑफिस का वर्कलोड और डेडलाइन मेंटल हेल्थ पर कितना इम्पैक्ट डालती है?
2: बेसिकली हम जो बोलते हैं डेडलाइंस, तो जैसे ही डेडलाइंस हम सुनते हैं, हमारे मन में फाइट या फ्लाइट रिस्पांस जो है वो ट्रिगर होता है. अब जैसे ही ये रिस्पांस ट्रिगर होता है तो हमारा स्ट्रेस हार्मोन ट्रिगर होता है, उसे वो स्ट्रेस हार्मोन हाई हो जाता है. जब ये स्ट्रेस हार्मोन हमेशा हाई रहता है तो फिर हमें कुछ दिक्कतें आती हैं, जैसे भूल जाना, गुस्से में आना, और फिर इमोशनल एग्जॉशन भी बहुत होता है कि बार बार रोना आ जाना, है ना, हम उसको इमोशनल आउटबर्स्ट्स बोलते हैं. तो ये सारी चीज़ें वर्कलोड और डेडलाइंस की वजह से होती है मोस्टली.
0: तो ऑफिस का वर्कलोड और डेडलाइन मेंटल हेल्थ पर किस तरीके से असर होता है इन सब चीज़ों का, और ये कितने डेंजरस चीज़ें हैं, तो इसी पर मैम ने अभी हमें इम्पोर्टेंट बातें बताई. तो दोस्तों, इस वक्त हम हर दिन ऐसे अपने मेंटल हेल्थ के बारे में जानेंगे. फिलहाल हम बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट वाले मेंटल हेल्थ की. आपके भी मन में कुछ सवाल हो तो आप हमें बता सकते हो 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर. मेंटल हेल्थ को वेल रखिए, जिंदगी ऑल इज वेल हो ही जाएगी. और सुनते रहिए.

दोस्तों इस वक्त मैं आपकी फरमाइशें पूरी करता हूँ, तो फरमाइशें बताते रहिए। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। All is well. Arjay and Nanaka morning show. Freshness light radio ka flow. On MGM 90.8 FM. और गाने की फरमाइश में अपने पास हर दिन बहुत सारी फरमाइशें आते हैं, तो आज अपने पास गाने की फरमाइश आई है रितेश काले की तरफ से इस गाने के लिए।

ना जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ। और ये गाना है छोटी सी बात इस मूवी से, जो कि आई थी 1976 में। सिंगर थे इसके लता मंगेशकर जी, और इस फिल्म के अंदर पता है स्टार कास्ट कौन थी? अमोल पारेकर, उत्पल दत्त एंड विद्या सिन्हा। और ये जो गाना है इसको डायरेक्ट किया था साहिल चौधरी ने, और लिरिक्स थे योगेश जी के। तो चलिए फिर अब ये गाना एंजॉय करते हैं फरमाइश वाला। बाय द वे, आपकी भी कुछ फरमाइश हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। बताइए आपकी फरमाइश और सुनते रहिए MGM 90.8 FM।

0: पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे और कहीं कहीं जगह पर मिल भी नहीं रहा। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। फिलहाल फ्यूल की क्या हालत चल रही है, किसी पेट्रोल पंप पर अवेलेबल है तो किसी के पास अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि पेट्रोल पूरी तरीके से बहुत ज्यादा सेव करके रखा है हमने, लेकिन लोग पैनिक होकर ना तो एक्स्ट्रा पेट्रोल अपने गाड़ियों में भर रहे और इसी वजह से पेट्रोल खत्म हो रहा है। एंड अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और रिक्शे वालों को बहुत दिक्कत हो रही है। तो उनका कहना है कि रिक्शे के थोड़े रेट से वो बढ़ाने वाले हैं। जहां पर 10 रुपए लगते थे वहां 15 रुपए लगेंगे, जहां 15 लगते थे वहां पर 20 रुपए आपको किराया देना पड़ेगा। एंड जो मीटर है, मीटर पर रिक्शे अपने शहर में बहुत कम चलते हैं, लेकिन जितने भी चलते हैं तो हर किलोमीटर के पीछे वो 4 रुपए बढ़ाने वाले हैं। सभी कहा गया है, मतलब 1 किलोमीटर के लिए 26 रुपए होते थे तो 30 रुपए वो वसूल करेंगे। खैर इनका ये मानना है, अब इसके ऊपर क्या डिसीजन लिया जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो मेरा एक सवाल है कि ये जो इलेक्ट्रिक रिक्शे अपने शहर में चलते हैं इनको क्या दिक्कत है, इन्होंने अपने किराए क्यों बढ़ाए हैं? मतलब पेट्रोल डीजल पर रिक्शे चलने वाले का समझ सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक वालों का ना पेट्रोल चाहिए, ना डीजल चाहिए, ना सीएनजी गैस चाहिए, ना एलपीजी गैस चाहिए, चाहिए तो इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी के दाम तो जितने हैं उतने ही हैं, ना ऊपर हो गए ना नीचे हो गए। तो आप लोग क्यों अपना किराया बढ़ा रहे हो भाई? आप तो पुराने किराए में अपना रिक्शा चलाइए। लेकिन नहीं, तेवंतत ना बहती गंगा में हाथ धोना, तो कुछ ऐसा चल रहा है। बाय द वे इसमें आपका फायदा है इलेक्ट्रिक रिक्शे वालों, अगर आप पुराना ही किराया वसूल करोगे ना तो लोग आपके रिक्शे में ज्यादा बैठेंगे, आपका भी प्रॉफिट होगा। सोचिए सोचिए, तो आप तो मत बढ़ाइए, थोड़ा आप समझिए हमारी हालत। खैर मेरे कहने से तो कुछ होगा नहीं, जो इनका यूनियन कहता है वही ये सुनेंगे। तो देखा जाएगा कि आने वाले वक्त में और कितना किराया महंगा हो सकता है रिक्शों का, ये तो वक्त ही बताएगा। स्टे ट्यून्ड।
1: एडमिशन ओपन MGM University School of Engineering and Technology. Programs BTech 4 years after HSC, Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology, Computer Science and Engineering, Cyber Security, Electronics Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 937171423 or visit MGM Campus N6 Sidco, Chhatrapati, Sambhajinagar.

किसी का अच्छा वक्त चलो ना चलो, लेकिन गर्मी का अच्छा वक्त चल रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। दिन दुगनी रात चौगनी तरीके से तरक्की बस इस साल का मौसम ही कर रहा है ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। एंड मौसम की बात है तो टेम्परेचर अपने शहर का भी पहुंच चुका है तकरीबन 41 से 42 डिग्री सेल्सियस तक, और ये सुबह 8 बजे से टेम्परेचर का बढ़ता बढ़ता बढ़ता ग्राफ हमें नजर आ रहा है। पहले 8 बजे कैसी ठंडी हवाएं चलती थी, अब सुबह 8 बजे हम उठे ना तो गर्म गर्म हवाएं चलती है। आणि ते म्हणतात ना की जगा जर्मनी आणि भारतात परभणी, तर अशा प्रकारे सर्वात जास्त टेम्परेचर सध्या आपल्या मराठवाड्यात परभणी येथे झालेला आहे 45.2 डिग्री सेल्सियस, और पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो अकोला डिस्ट्रिक्ट में 46 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है। तो इतना टेम्परेचर ये बवाल मचा रहा है। अपना ख्याल रखिएगा और दोपहर के वक्त में बाहर जाना अवॉइड कीजिए, कितना भी जरूरी काम हो तो निकलना जरूरी है, तो जरा टोपी वगैरह पहनिए, छतरी यूज कीजिए और इस गर्मी से बचिए, वरना एक बार आपको लू लग गई ना तो लू हो जाओगे आप पूरा। तो बी सेफ बी केयरफुल, ख्याल रखिए क्योंकि आपकी बंदी से ज्यादा मुझे आपकी फिक्र है, समझे? सो स्टे कूल एंड स्टे ट्यून्ड।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

एक फोन कॉल से आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, तो सोच समझ के सामने वाले की बातें मानिएगा। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। छत्रपति संभाजी नगर में केस सामने आया है, जहाँ पर एक बुजुर्ग जिनके साथ 13 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ। बात कुछ ऐसी थी कि सामने से कॉल आया कि हेलो, मैं IPS सुनील कुमार गौतम बात कर रहा हूँ, आपके ऊपर ना तो एक केस दर्ज हो चुका है फ्रॉड का, तो इसके इंक्वायरी के लिए आपको दिल्ली आना पड़ेगा। तो ये बात सुनने के बाद वो बुजुर्ग बहुत घबरा गए। अब वो करेगी भी क्या यार, इनको इतना नॉलेज तो नहीं है इस बात का। तो उन्हें लगा कि यार ऐसा तो कुछ किया नहीं मैंने, तो मेरे ऊपर कैसे क्या केस आ गया। तो उसके बाद फिर शुरू हो गया असली गेम। तो सामने वाले बंदे ने कहा कि मैं IPS ऑफिसर हूँ, मेरे हाथ में बहुत कुछ है, अगर आपको दिल्ली नहीं आना है और इस केस से दूर रहना है ना, तो आप ऑनलाइन पैसे मुझे ट्रांसफर कीजिएगा, मैं ये पूरा मैटर यहीं सॉर्ट आउट करूंगा। तो उन बुजुर्ग ने तकरीबन 13 लाख रुपए उस IPS ऑफिसर को दिए। तो ये बात उनके बेटे को पता चली जो कि अमेरिका में रहता है। तो उन्होंने गूगल किया और उस ऑफिसर का नाम सर्च किया, तब पता चला कि ऐसा कोई ऑफिसर है ही नहीं, ये तो पूरा फ्रॉड हो चुका था। बाद में फिर ये पूरा केस सामने आया और उन बुजुर्ग के अकाउंट से 13 लाख रुपए गायब हो गए। तो इस वजह से कह रहा हूँ कि फ्रॉड कॉल ऐसे आजकल बहुत बढ़ रहे हैं, तो आपके पास भी कोई कॉल आए, कोई वीडियो कॉल आए, पुलिस बात कर रहा हो, तो उस कॉल को अवॉइड कीजिएगा। एक ही उसे कहिएगा, भाई पहली फुर्सत में निकल। पुलिस डिपार्टमेंट खुद कहता है कि वो किसी भी तरीके का ऑनलाइन कॉल करके किसी भी केस की इन्फॉर्मेशन नहीं देते है, एंड वीडियो कॉल के जरिए तो बिल्कुल भी नहीं देते है। तो ये भी केस बहुत बढ़ रहे हैं, तो आप भी सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है तो आप इसकी ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो साइबर क्राइम के हेल्पलाइन नंबर पर 1930। इस नंबर को याद रखिएगा, 1930। हेल्प चाहिए या फिर कंप्लेंट दर्ज करनी है तो आप इस पर कर सकते हो। सो बी सेफ, बी केयरफुल एंड स्टे ट्यून्ड।

आपकी बस दो मिनट ही लूंगा, लेकिन इससे ना तो किसी की जिंदगी बच सकती है। आप सुन रहे हो MGM 90.8 FM। गर्मी बढ़ती जा रही है, हम सबके पास ऑप्शंस है, एसी, कूलर, फ्रिज, ठंडा पानी सब कुछ है, पर कभी सोचा है उन छोटे परिंदों के बारे में जो दिन भर इस तेज धूप में उड़ते रहते हैं? ना कोई छत, ना कोई पानी का जग, बस आसमान और गर्मी। और जब उन्हें पानी नहीं मिलता तो वो लिटरली प्यास से मर जाते हैं। दोस्तों, ये कोई इमोशनल स्टोरी नहीं है, ये रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। और आजकल ना तो बहुत सारे ऐसे परिंदे हैं जो कि बिना पानी की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। तो इसलिए आज से एक छोटी शुरुआत हम कर सकते हैं। एक छोटा सा कदम आपने उठाया और मैंने उठाया, तो ऐसे हजारों परिंदे हैं जो कि बच सकते हैं इस गर्मी में और उनकी जान भी बच सकती है। तो आपको करना क्या है, अपने घर के बाहर या छत पर एक छोटी सी प्लेट या मिट्टी का बर्तन रखना है जिसमें पानी रखना है, और पॉसिबल हो तो थोड़ा दाना भी रख सकते हो जो कि परिंदे खा सकते हैं खाने के लिए। आपको पता भी नहीं चलेगा और किसी एक चिड़िया की जान बच जाएगी इस छोटे से कदम की वजह से। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह काम ना महंगा है ना मुश्किल है, बस थोड़ी सी इंसानियत चाहिए। हर किसी के घर के बाहर थोड़ी जगह होती है, छत होता है या तो फिर बालकनी होती है, खिड़की होती है, वहाँ पर बस एक प्लेट में या छोटी कटोरी में भी आपने पानी रख दिया तो उस वजह से परिंदों की जिंदगी बच सकती है और इस गर्मी में उन्हें पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। और यही चीज आप फॉलो कर सकते हो अपने घर के बाहर भी बाकी जानवरों के लिए एक बकेट में पानी रखकर। आपका छोटा इंसानियत का कदम किसी की जिंदगी बचाएगा। सो प्लीज यार, इतना काम आप कीजिएगा और किसी की जान बचाइएगा। और सुनते रहना

0: आपको पता है आप ना तो मेरे साथ 24/7 भी कनेक्ट रह सकते हो। आरजी अदनान आपके साथ
1: MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।
0: देखो यार, शो में ना तो मेरी और आपकी मुलाकातें तो होती है, को मुझसे कनेक्ट रहना है यार, कुछ बात शेयर करनी है, कुछ बताना हो, जो कुछ भी बातें करनी हो ना, तो अपना सोशल मीडिया तो है ना यार। सोशल मीडिया पर यानी कि इंस्टाग्राम पर मेरा अकाउंट है आरजी अदनान, इस नाम से मेरा पेज है। अब देखो, एंटरटेनमेंट के लिए ना तो पहले रेडियो यूज हुआ करता था, अब तो रेडियो तो है, उसी के साथ साथ आपको आपके हाथ में भी एंटरटेनमेंट चाहिए ना, तो सोशल मीडिया के जरिए हो ही जाता। और मेरे ना तो जो कुछ रील्स में बनाता हूँ ना, एंटरटेनमेंट वाले होते, तो आपका वहां पर भी ना तो मैं मनोरंजन करूंगा ही, चाहे फिर वो मिनी व्लॉग हो, शायरी हो, कुछ फनी वीडियो हो, इन सब तरीकों से ना तो मैं आपका मनोरंजन करने के लिए सोशल मीडिया पर अवेलेबल हूँ। तो एक काम कीजिएगा, अपना मोबाइल हाथ में लीजिए, ले लिया क्या, ब्लॉग ओपन कीजिए, इंस्टाग्राम ओपन करें, वहां पर सर्च करें RJADNAN अदनान, अदनान मत करो, बहुत से लोग ना तो मेरा नाम ही गलत लिखते, अदनान, अदनान नहीं हूं यार, मैं ज्ञानी आदमी हूं, RJ अदनान ADNAN, ये मेरा इंस्टा आईडी है। वहां पर ओपन करने के बाद देखो यार, लेफ्ट साइड में ना तो आपको ग्रीन कलर का बटन दिखेगा, हाँ एग्जैक्टली वही, अब आपकी प्यारी सी उंगली से उसको क्लिक करो और मुझे फॉलो भी करो। और देखो, मैं और आप ना तो फिर 24/7 कनेक्ट रह पाएंगे, सो इंस्टा पर आने के बाद मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा और वहां पर भी अपना मनोरंजन मैं जारी रखूंगा। सो फॉलो कीजिए और बाकी सुनते रहिए आरजे अदनान के साथ MGM 90.8 FM।
2: All is well, RJ Adnan का मॉर्निंग शो, freshness like radio का flow on MGM 90.8 FM।

पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: परफेक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है FGM 90.8 FM।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तुम बात है।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है एफएम 90.8।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM
0: साथ है तो बात।

0: सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है NGM 90.8 FM।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

एंड आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। शाम का वक्त हो, हल्की सी थकान हो और हाथ में गरम कप, बस फिर क्या, जिंदगी थोड़ी और अच्छी लगने लगती है। लेकिन सवाल ये है कि उस कप में क्या होना चाहिए, चाय या कॉफ़ी। आजकल बड़ी डिबेट चल रही है इस बारे में। अब चाय वालों की अपनी अलग फीलिंग होती है और उनके लिए चाय सिर्फ ड्रिंक नहीं, इमोशन है। सुबह की शुरुआत से लेकर दोस्तों की गपशप तक हर जगह एक कटिंग हो जाए वाला मूड तैयारी होता है। बारिश हो, सफर हो या दिल थोड़ा उदास हो, चाय हर सिचुएशन में साथ निभाती है। वही कॉफी लवर्स का भी अलग ही स्वैग होता है। उनके लिए कॉफी का मतलब क्लास, एनर्जी और थोड़ा सा मूड ऑन वाला फील होता है। देर रात काम करना हो, किसी कैफे में बैठकर बातें करनी हो या बस अकेले थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना हो, कॉफ़ी हमेशा फिट बैठती है। लेकिन मज़ेदार बात तो ये है कि चाहे टीम चाय हो या टीम कॉफ़ी हो, दोनों का काम एक ही है, चेहरे पर मुस्कान लाना और थकान को थोड़ा कम करना। और सच कहे तो असली मज़ा उस ड्रिंक में नहीं, उस पल में होता है जिसे हम एंजॉय करते हैं। तो आज की शाम को क्या चुनेंगे आप, अदरक वाली गर्मा गर्म चाय या फिर फ्रेश कॉफ़ी खुशबू वाली? जो भी हो, अपने पसंदीदा कप के साथ थोड़ी सी खुशी और थोड़ा रिलैक्स टाइम ज़रूर लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ ही सबसे ज़्यादा मायने रखती है। स्टे ट्यून्ड, एमजे मनानी पॉइंट एफएम, साथ है तो बात है।

यार कहते हैं ना, जब मोहब्बत धीरे धीरे दिल में उतरती है तो जिंदगी के हर रंग और भी गहरे लगने लगते हैं। दिस इज आरजे मनीषा एंड यू आर लिसनिंग मी ऑन एमजेम 90.8 FM। वही शामें अक्सर ज़्यादा खूबसूरत लगती है, वही गाने दिल को ज़्यादा छूने लगते हैं और छोटी छोटी बातें भी खास बन जाती है। आशिकी का रंग भी कुछ ऐसा ही होता है, शुरुआत में हल्का सा एहसास, फिर धीरे धीरे वो एहसास दिल की आदत बन जाता है। किसी की आवाज़ सुनकर मुस्कुराना, उसके मैसेज का इंतज़ार करना या

बिना वजह उसका ख्याल आ जाना, यही तो प्यार की सबसे प्यारी बातें हैं। और जब मोहब्बत सच्ची हो ना, तो उसका रंग वक्त के साथ और गहरा हो जाता है। उसमें सिर्फ रोमांस नहीं होता, उसमें अपनापन होता है, फिक्र होती है और सुकून होता है जो दिल के अंदर तक खुश कर देता है। कभी कभी एक इंसान हमारी पूरी दुनिया का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाता है। उनके साथ बिताया हर पल किसी प्यारे गाने की तरह लगता है, जिसे बार बार सुनने का मन करे। तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा है जिसने आपकी दुनिया को थोड़ा और रंगीन बना दिया है, तो आज की शाम उसे दिल से एक स्माइल ज़रूर दीजिए, क्योंकि मोहब्बत जताने के लिए हमेशा बड़े शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी छोटी सी केयर भी काफ़ी होती है। प्यार का रंग जितना गहरा होता है, ज़िंदगी उतनी ही खूबसूरत लगने लगती है। सुनते रहिए आप और मुस्कुराते रहिए और महसूस करते रहिए ये सारी फीलिंग्स को, ओनली ऑन MG 90.8 FM। साथ है तो बात है।

0: तुमच्या करिअर साठी योग्य पर्याय शोधताय? इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
1: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: PG, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
1: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404-94299.
2: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
0: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
3: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763 67 9245 or 9665353515.

कभी आपने नोटिस किया है, जैसे ही कोई इम्पोर्टेंट डे आने वाला होता है, शादी पार्टी डेट इंटरव्यू या कोई खास फंक्शन, तभी चेहरे पर एक नया पिंपल एंट्री मार लेता है? जी हाँ, दिस इज आरजे मनीषा एंड यू आर लिसनिंग मी ऑन एमजीएम 90.8 FM। यार ये पिंपल ना, मतलब यार क्या ही बोलूँ मैं इसके बारे में, फिर शुरू हो जाता है टेंशन का पूरा सीजन। आईने के सामने खड़े होकर हम सब यही सोचते रहते हैं, यार अभी ही आना था इसको। लेकिन सच बताओ, ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, लगभग हर इंसान ने कभी ना कभी इस स्पेशल डे स्पेशल पिंपल वाली सिचुएशन को फेस जरूर किया है। फिर हम इंटरनेट के सारे घरेलू नुस्खे ट्राई करने लगते हैं, कोई बर्फ लगाने लगता है, कोई टूथपेस्ट, तो कोई कुछ और ही कर देता है, और कुछ लोग तो हर 5 मिनट में आईना चेक करते रहते हैं। लेकिन असली बात तो ये है कि एक छोटा सा पिंपल आपकी पूरी पर्सनालिटी को काफ़ी डिफाइन कर देता है। आपकी स्माइल, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी पॉजिटिव एनर्जी, वही सबसे ज़्यादा नोटिस होती है। लोग आपके चेहरे पर एक पिंपल नहीं, आपकी खुशियों की चमक याद रखते हैं। तो अगली बार किसी खास दिन से पहले अचानक मेहमान, मतलब कभी पिंपल आ जाए चेहरे पर, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, थोड़ा स्किन का ध्यान रखिए, पानी पीजिए, अच्छी नींद लीजिए, और सबसे ज़रूरी, खुद को लेकर ओवरथिंकिंग मत कीजिए, क्योंकि असली ग्लो मेकअप या फिल्टर में नहीं, खुश रहने में होता है। सो आप सुनते रहिए MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: मिलके भी टिकती नहीं,
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है, और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं
2: MGM University, Department of Instrumentation and Control Engineering, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784।
3: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
4: Attention future researchers and innovators.
5: MGM University is now inviting application for PhD admissions 2026 and 27. Thus, LLB Nantar Kara, LLM, Constitution, Criminal and Intellectual Property Rights Madhe, 2 varshachar Business Madhe, 1 varshacha Vishesh Abhyaskram.
4: If you are ready to take your academic journey to the next level, this is your opportunity.
5: Last date to apply 21st May 2026 and entrance exam 23rd May 2026. Apply now. Visit www.admissions.mgmu.ac.in/phd or call on 906-7612-000.

शादी का सीजन हो, ऑफिस में पार्टी हो या कोई फैमिली फंक्शन, एक चीज लगभग हर किसी के दिमाग में जरूर चलती है और वो चीज क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। दिस इज आरजे मनीषा एंड यू आर लिसनिंग मी ऑन एमजीएम 90.8 FM। इस चीज के मैं बारे में बात कर रही हूँ ना, वो बहुत ही रिलेटेबल है। बस थोड़ा सा वेट कम हो जाए तो आउटफिट और भी अच्छा लगने लगेगा, सही कह रही हूँ ना मैं? और फिर शुरू हो जाता है मिशन फैट लॉस। कोई सुबह जल्दी उठकर वॉक शुरू कर देता है, कोई अचानक से मीठा बंद कर देता है और कुछ लोग तो फंक्शन से ठीक एक हफ्ते पहले फिटनेस मोड ऑन कर देते हैं। लेकिन सच कहे तो फिट दिखने का मतलब सिर्फ पतला होना नहीं होता, असली बात है हेल्दी और कॉन्फिडेंट महसूस करना। क्योंकि अगर आप खुश हैं, एनर्जेटिक है और खुद को लेकर अच्छा महसूस कर रहे हैं तो वही आपकी सबसे बड़ी स्टाइल है। हाँ, हेल्दी लाइफस्टाइल ज़रूरी है। थोड़ा वॉक, थोड़ा एक्सरसाइज, अच्छा खाना और अच्छी नींद, ये सब हमारी बॉडी को और माइंड को दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ किसी फंक्शन के लिए खुद को परेशान करना भी सही नहीं है। कई बार लोग इतनी स्ट्रिक्ट डाइट पर चले जाते हैं कि फंक्शन वाले दिन तक थक जाते हैं। अरे भाई, ज़िंदगी का मज़ा भी लेना ज़रूरी है। कभी कभी अपनी फेवरेट मिठाई भी खा लिया करो, दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती। बैलेंस ही असली फिटनेस है। तो अगर आपका भी कोई फंक्शन आने वाला है तो आउटफिट की तैयारी के साथ साथ अपनी स्माइल और कॉन्फिडेंस भी तैयार रखिए, क्योंकि सबसे अच्छा लुक वही होता है जब इंसान अंदर से खुश होता है। तो खुद से प्यार कीजिए, हेल्दी रहिए और ऑफ कोर्स सुनते रहिए एमजीएम 90.8 FM। साथ है तो बात है।

जिंदगी में हम अक्सर सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, परिवार, दोस्त, ऑफिस, रिश्ते, लेकिन इस भागदौड़ में एक इंसान को सबसे ज्यादा इग्नोर कर देते हैं और वो है हम खुद। दिस इज आरजे मनीषा एंड यू आर लिसनिंग मी ऑन एमजीएम 90.8 FM। आज की शाम बस एक छोटी सी बात, खुद से प्यार करना सीखिए, क्योंकि जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं समझेंगे तब तक दुनिया भी आपको वैसे नहीं देख पाएगी जैसे आप डिजर्व करते हैं। लव योर सेल्फ का मतलब घमंड नहीं होता, इसका मतलब है खुद की रिस्पेक्ट करना, अपनी खुशियों का ध्यान रखना और अपनी कमियों के साथ भी खुद को अपनाना। हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर इंसान खास जरूर होता है। कभी खुद को आईने में देखकर मुस्कुराइए, खुद से कहिए मैं जैसी भी हूँ अच्छी हूँ और हर दिन बेहतर बनने की कोशिश कर रही हूँ। यकीन मानिए, ये छोटी सी पॉजिटिव बात अपने पूरे दिन का मूड बदल देती है। दूसरों से तुलना करते करते हम कई बार अपनी ही अच्छाइयाँ भूल जाते हैं, लेकिन याद रखिए आपकी कहानी, आपका सफर और आपकी पहचान सबसे अलग है। इसलिए खुद को कम मत समझिए, अपने लिए थोड़ा टाइम निकालिए, वो गाने सुनिए जो दिल खुश कर दे, वो काम कीजिए जो आपको पसंद है और सबसे जरूरी, खुद पर जरूरत से ज्यादा सख्त मत बनिए, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं ना तो जिंदगी थोड़ी आसान लगने लगती है, थोड़ी खूबसूरत और बहुत ज्यादा खुश लगने लगती है। तो दोस्तों, आज की शाम खुद को एक प्यारी सी स्माइल दीजिए और दिल से कहिए मैं अपनी खुशी की वजह खुद बनूंगी, एंड ऑफ कोर्स देखिएगा मैजिक हो जाएगा। सुनते रहिए एमजीएम 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। दिस इज आरजे मनीषा एंड यू आर लिसनिंग मी ऑन एमजीएम 90.8 FM। उम्मीद है कि आज का सफर, ये बातें और ये प्यारा सा साथ आपके चेहरे पर मुस्कान छोड़ गया हो। पूरे दिन की भागदौड़ के बाद अगर कुछ पल दिल हल्का हो जाए, मूड अच्छा हो जाए और चेहरे पर छोटी सी खुशी आ जाए तो समझिए हमारी कोशिश सफल हो गई, क्योंकि जिंदगी में खुश रहना भी एक कला है और छोटी छोटी बातों को एंजॉय करना उसका सबसे खूबसूरत हिस्सा। तो जाते जाते बस यही कहना चाहूंगी, हर पल को खुलकर जीना सीखिए। चाय की छोटी सी चुस्की हो, दोस्तों के साथ हंसी मजाक हो, रास्तों का सफर हो, अकेले में थोड़ा सा मी टाइम हो, हर मोमेंट में खुशी ढूंढिए। कल की चिंता और बीते हुए कल का बोझ लेकर आज की खुशियां खराब मत कीजिए। जिंदगी बहुत तेज भाग रही है, इसलिए जरूरी है कि बीच बीच में रुककर खुद को थोड़ा महसूस कीजिए। अपनों का ध्यान रखिए, दिल से मुस्कुराइए और खुद को हमेशा पॉजिटिव वाइब्स में घेर कर रखिए, क्योंकि अच्छी सोच और खुशी दिल और हर दिन को खूबसूरत बना देती है। तो दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाजत, अपनी शाम, अपनी रात और अपनी जिंदगी को दिल से एंजॉय करते रहिए एंड ऑफ कोर्स सुनते रहिए एमजीएम 90.8 FM। साथ है तो बात है।
1: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं,
2: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
3: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
2: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
3: MGM यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784।
4: MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट इज रेडी टू हेल्प यू मेक योर करियर इन होटल मैनेजमेंट, एविएशन, कलिनरी आर्ट्स, बेकरी एंड इवेंट मैनेजमेंट। Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
5: Attention future researchers and innovators.
6: MGM University is now inviting application for PhD admissions 2026 and 2027. This is LLB नंतर करा LLM. Constitution, Criminal आणि Intellectual Property Rights मध्ये 2 वर्षे तर Business मध्ये 1 वर्षाचा विशेष अभ्यासक्रम.
5: If you are ready to take your academic journey to the next level, this is your opportunity.
6: Last date to apply 21st May 2026 and entrance exam 23rd May 2026. Apply now. Visit www.admissions.mgmu.ac.in/phd or call on 906-7612-000.

पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे और कहीं कहीं जगह पर मिल भी नहीं रहा। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। फिलहाल फ्यूल की क्या हालत चल रही है, किसी पेट्रोल पंप पर अवेलेबल है तो किसी के पास अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि पेट्रोल पूरी तरीके से बहुत ज्यादा सेव करके रखा है हमने, लेकिन लोग पैनिक होकर ना तो एक्स्ट्रा पेट्रोल अपने गाड़ियों में भर रहे और इसी वजह से पेट्रोल खत्म हो रहा है। एंड अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और रिक्शे वालों को बहुत दिक्कत हो रही है। तो उनका कहना है कि रिक्शे के थोड़े रेट से वो बढ़ाने वाले हैं। जहां पर 10 रुपए लगते थे वहां 15 रुपए लगेंगे, जहां 15 लगते थे वहां पर 20 रुपए आपको किराया देना पड़ेगा। एंड जो मीटर है, मीटर पर रिक्शे अपने शहर में बहुत कम चलते हैं, लेकिन जितने भी चलते हैं तो हर किलोमीटर के पीछे वो 4 रुपए बढ़ाने वाले हैं। सभी कहा गया है, मतलब 1 किलोमीटर के लिए 26 रुपए होते थे तो 30 रुपए वो वसूल करेंगे। खैर इनका ये मानना है, अब इसके ऊपर क्या डिसीजन लिया जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो मेरा एक सवाल है कि ये जो इलेक्ट्रिक रिक्शे अपने शहर में चलते हैं इनको क्या दिक्कत है, इन्होंने अपने किराए क्यों बढ़ाए हैं? मतलब पेट्रोल डीजल पर रिक्शे चलने वाले का समझ सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक वालों का ना पेट्रोल चाहिए, ना डीजल चाहिए, ना सीएनजी गैस चाहिए, ना एलपीजी गैस चाहिए, चाहिए तो इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी के दाम तो जितने हैं उतने ही हैं, ना ऊपर हो गए ना नीचे हो गए। तो आप लोग क्यों अपना किराया बढ़ा रहे हो भाई? आप तो पुराने किराए में अपना रिक्शा चलाइए। लेकिन नहीं, तेवंतत ना बहते गंगा में हाथ धोना, तो कुछ ऐसा चल रहा है। बाय द वे, इसमें आपका फायदा है इलेक्ट्रिक रिक्शे वालों, अगर आप पुराना ही किराया वसूल करोगे ना तो लोग आपके रिक्शे में ज्यादा बैठेंगे, आपका भी प्रॉफिट होगा। सोचिए सोचिए, तो आप तो मत बढ़ाइए, थोड़ा आप समझिए हमारी हालत। खैर मेरे कहने से तो कुछ होगा नहीं, जो इनका यूनियन कहता है वही ये सुनेंगे। तो देखा जाएगा कि आने वाले वक्त में और कितना किराया महंगा हो सकता है रिक्शों का, ये तो वक्त ही बताएगा। स्टे ट्यून।

0: तुमच्या करिअरसाठी योग्य पर्याय शोधताय? इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
1: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: PG, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
1: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404-94299.
2: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
0: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
3: तो MGM University Institute of Indian and फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरबिक, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763679245 और 9665353515.

किसी का अच्छा वक्त चलो ना चलो, लेकिन गर्मी का अच्छा वक्त चल रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। दिन दुगनी रात चौगनी तरीके से तरक्की बस इस साल का मौसम ही कर रहा है ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। एंड मौसम की बात है तो टेम्परेचर अपने शहर का भी पहुंच चुका है तकरीबन 41 से 42 डिग्री सेल्सियस तक, और ये सुबह 8 बजे से टेम्परेचर का बढ़ता बढ़ता बढ़ता ग्राफ हमें नजर आ रहा है। पहले 8 बजे कैसी ठंडी हवाएं चलती थी, अब सुबह 8 बजे हम उठे ना तो गर्म गर्म हवाएं चलती है। आणि ते म्हणतात ना की जगात जर्मनी आणि भारतात परभणी, तर अशा प्रकारे सर्वात जास्त टेम्परेचर सध्या आपल्या मराठवाड्यात परभणी येथे झालेला आहे 45.2 डिग्री सेल्सियस, और पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो अकोला डिस्ट्रिक्ट में 46 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है। तो इतना टेम्परेचर ये बवाल मचा रहा है। अपना ख्याल रखिएगा और दोपहर के वक्त में बाहर जाना अवॉइड कीजिए, कितना भी जरूरी काम हो तो निकलना जरूरी है, तो जरा टोपी वगैरह पहनिए, छतरी यूज कीजिए और इस गर्मी से बचिए, वरना एक बार आपको लू लग गई ना तो लू हो जाओगे आप पूरा। तो बी सेफ बी केयरफुल, ख्याल रखिए क्योंकि आपकी बंदी से ज्यादा मुझे आपकी फिक्र है, समझे? सो स्टे कूल एंड स्टे ट्यून्ड।

0: जॉब मिलके भी टिकती नहीं,
1: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
2: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है, और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
2: MGM University Department of Instrumentation and Control Engineering, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784।
3: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
4: Attention future researchers and innovators.
5: MGM University is now inviting application for PhD admissions 2026 and 27. Thus, LLB Nantar Kara, LLM, Constitution, Criminal and Intellectual Property Rights Madhe 2 Varshi Tar Business Madhe 1 Varshaacha Vishesh Abhyaskram.
4: If you are ready to take your academic journey to the next level, this is your opportunity.
5: Last date to apply 21st May 2026 and entrance exam 23rd May 2026. Apply now. Visit www.admissions.mgmu.ac.in/phd or call on 906-7612-000.

0: एक फोन कॉल से आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, तो सोच समझ के सामने वाले की बातें मानिएगा। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। अपने छत्रपति संभाजीनगर में केस सामने आया है, जहां पर एक बुजुर्ग जिनके साथ 13 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ। बात कुछ ऐसी थी कि सामने से कॉल आया कि हेलो, मैं IPS सुनील कुमार गौतम बात कर रहा हूँ, आपके ऊपर ना तो एक केस दर्ज हो चुका है फ्रॉड का, तो इसके इंक्वायरी के लिए आपको दिल्ली आना पड़ेगा। तो ये बात सुनने के बाद वो बुजुर्ग बहुत घबरा गए। अब वो करेगी भी क्या यार, इनको इतना नॉलेज तो नहीं है इस बात का। तो उन्हें लगा कि यार ऐसा तो कुछ किया नहीं मैंने, तो मेरे ऊपर कैसे क्या केस आ गया। तो उसके बाद फिर शुरू हो गया असली गेम। तो सामने वाले बंदे ने कहा कि मैं IPS ऑफिसर हूँ, मेरे हाथ में बहुत कुछ है, अगर आपको दिल्ली नहीं आना है और इस केस से दूर रहना है ना, तो आप ऑनलाइन पैसे मुझे ट्रांसफर कीजिएगा, मैं ये पूरा मैटर यहीं सॉर्ट आउट करूंगा। तो उन बुजुर्ग ने तकरीबन 13 लाख रुपए उस IPS ऑफिसर को दिए। तो ये बात उनके बेटे को पता चली जो कि अमेरिका में रहता है, तो उन्होंने गूगल किया और उस ऑफिसर का नाम सर्च किया, तब पता चला कि ऐसा कोई ऑफिसर है ही नहीं, ये तो पूरा फ्रॉड हो चुका था। बाद में फिर ये पूरा केस सामने आया और उन बुजुर्ग के अकाउंट से 13 लाख रुपए गायब हो गए। तो इस वजह से कह रहा हूँ कि फ्रॉड कॉल ऐसे आजकल बहुत बढ़ रहे हैं, तो आपके पास भी कोई कॉल आए, कोई वीडियो कॉल आए, पुलिस बात कर रहा हो, तो उस कॉल को अवॉइड कीजिएगा। एक ही उसे कहिएगा, भाई पहली फुर्सत में निकल। पुलिस डिपार्टमेंट खुद कहता है कि वो किसी भी तरीके का ऑनलाइन कॉल करके किसी भी केस की इन्फॉर्मेशन नहीं देते है, एंड वीडियो कॉल के जरिए तो बिल्कुल भी नहीं देते है। तो ये भी केस बहुत बढ़ रहे हैं, तो आप भी सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है तो आप इसकी ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो साइबर क्राइम के हेल्पलाइन नंबर पर 1930। इस नंबर को याद रखिएगा, 1930 1930। हेल्प चाहिए या फिर कंप्लेन दर्ज करनी है तो आप इस पर कर सकते हो। सो बी सेफ, बी केयरफुल एंड स्टे ट्यून्ड।
1: फार्मसीमध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
2: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
1: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू, ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर, अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
1: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।
3: पेन नहीं या वेड़ी मोबाइल सा नवा उपक्रम आए विवरण आनी मा

आपकी बस दो मिनट ही लूंगा, लेकिन इससे ना तो किसी की जिंदगी बच सकती है। आप सुन रहे हो MGM 90.8 FM। गर्मी बढ़ती जा रही है, हम सबके पास ऑप्शन है, एसी, कूलर, फ्रिज, ठंडा पानी सब कुछ है, पर कभी सोचा है उन छोटे परिंदों के बारे में जो दिन भर इस तेज धूप में उड़ते रहते हैं, ना कोई छत, ना कोई पानी का जग, बस आसमान और गर्मी, और जब उन्हें पानी नहीं मिलता तो वो लिटरली प्यास से मर जाते हैं। दोस्तों ये कोई इमोशनल स्टोरी नहीं है, ये रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। और आजकल ना तो बहुत सारे ऐसे परिंदे हैं जो कि बिना पानी की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं, तो इसलिए आज से एक छोटी शुरुआत हम कर सकते हैं। एक छोटा सा कदम आपने उठाया और मैंने उठाया, तो ऐसे हजारों परिंदे हैं जो कि बच सकते हैं इस गर्मी में और उनकी जान भी बच सकती है। तो आपको करना क्या है, अपने घर के बाहर या छत पर एक छोटी सी प्लेट या मिट्टी का बर्तन रखना है जिसमें पानी रखना है, और पॉसिबल हो तो थोड़ा दाना भी रख सकते हो जो कि परिंदे खा सकते हैं खाने के लिए। आपको पता भी नहीं चलेगा और किसी एक चिड़िया की जान बच जाएगी इस छोटे से कदम की वजह से। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये काम ना महंगा है ना मुश्किल है, बस थोड़ी सी इंसानियत चाहिए। हर किसी के घर के बाहर थोड़ी जगह होती है, छत होता है या तो फिर बालकनी होती है, खिड़की होती है, वहाँ पर बस एक प्लेट में या छोटी कटोरी में भी आपने पानी रख दिया तो उस वजह से परिंदों की जिंदगी बच सकती है और इस गर्मी में उन्हें पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। और यही चीज आप फॉलो कर सकते हो अपने घर के बाहर भी बाकी जानवरों के लिए एक बकेट में पानी रखकर। आपका छोटा इंसानियत का कदम किसी की जिंदगी बचाएगा। सो प्लीज यार इतना काम आप कीजिएगा और किसी की जान बचाइएगा। और सुनते रहना

0: तुमच्या करिअर साठी योग्य पर्याय शोधताय? इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
1: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: PG, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
1: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404-94299.
0: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
2: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक. डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763-67-9245 or 9665-35-5315.
3: What's your problem, dude?
4: Batata.
3: What the?

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94 एफएम, साथ है तो बात है।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ है।